0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji, Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
5: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हां जी, मैं हूं एक और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो। हां जी 16748 बेबी।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: नेक्सस।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian radio station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: आओ।
1: हैं, वेखी कितने भैन काली ना कर लिया।
0: खेल जी बोर पर माँ माँ माँ माँ दा दा दा इतना बहुत कर दी।
1: हाँ, उत्थे जाके तो ज्यादा खेडन लग पेंदे न्याणे, है ना। की फाने फिर उत्थे?
0: उठे कुछ नहीं, इतने मतलब तो बच्चे है ना, इधर तो बच्चे थे
1: अच्छा,
0: वादू मांग के आए
1: ते
0: ते। हाँ
1: होर चीजा केड़ियां तानू वधिया लगदियां? कोई की खेडदे हुंदे को ब्रण?
0: मतलब पी हड़कों वही बॉल है दी जंडियाले होते उन्हें खेल रही लगा थी कदी ते। होर कुछ
2: टीवी भी
0: और
2: लाने
0: ना
2: हो कितने माड़ा
0: कुछ।
2: मोटा,
0: हाँ जी टीवी तो भी
1: टीवी भी ला
0: देखने
1: लेने। वांडे
2: चलदा ते मोगली छोटा भीम,
0: की
2: मोगली ते छोटा भीम बहुत आउंदा कहिंदे उत्थे, उन्हां दे नाटक आउंदे
0: नहीं
2: न्याणे नाल। टॉम एंड
0: अई
2: जेरी,
0: वाईफाई ना फिर जिदा ताड़े टीवी चलते उदा दे हादे चलते है।
1: उत्थे भी उदा ही चलदे
2: हाँ
1: आ।
2: सिस्टम बन गया यार,
1: नेटफ्लिक्स दी गल करो तुसीं,
2: पिज्जा हट आ गया, मैकडोनल्ड खुल गया।
1: ते वांडे वूंडे भी चल जांदे हो कि नहीं?
0: हाँ जी चल जाने हाडे लागे है गया ना क्या है ना ये हाडे लागे है गया की ना ना दा
2: कोई शहर कस्बा?
0: मासी मासी ते आओ मासी ते मामू उठे चल जाई दा करी करी
1: अच्छा,
0: ते मतलब पी ओ वाले मामू नी जिन्ना ने व्याह होया कि मैं उन्हें दे सरबाला होने हैं दूजे भी आगे मसी मामू
1: अच्छा।
0: और नान के जे लागे या
1: अच्छा
0: उठे कदी कदी उन्हें दे पर चढ़ गए या उधर ना अगम हंदा ते कदी कदी उधर ना खेड़ देना पर हाँ
2: ते
0: ते
2: शॉपिंग सेंटर हैगे इत्थे अंबरसर? मैनूं लगदा ना वीडियो गेमां वगैरह भी खेडदे होणे उत्थे, प्ले स्टेशन वगैरह कि नहीं?
0: जिदा जिदा ताड़े के मार्ट है अच्छा डी मार्ट है।
2: टी मार्ट खुल गया?
1: हाँ
2: अच्छा
1: वेख्या,
2: ओके।
1: उत्थे भी बड़ा कुछ आ। ते फिर तां यार बेली हैगे कि नहीं पुराने, जिहड़े छड के आए हो उत्थे?
0: की
1: तुहाडे यार बेली फ्रेंड तुहाडे हैगे आ कि नहीं, जिहड़े छड के आए हो?
0: पिंड दे विच छड़ के आएंगे हैगे दो क दो क
1: कितना खेड़ दे खूड़ दे के बदल गए आ?
0: नहीं बदल गया
1: क्यों?
0: हानू कर पता पता नहीं कर किथे होना था।
1: अच्छा, ले तो
0: हाँ पता भी किथे खेडते हैं किथे
1: कहे तो
0: खेडना कि
1: ही स्कूल होना है ना किसी दिन अपने, तो उत्थों लभ जाने ही।
0: अजे अजे मैं पढ़ना हूँ स्कूल पर नमस्ते
1: अच्छा पढ़ना है? ओके, तो उते वो जड़ी मैडम है
0: नमस्ते।
1: उन्होंने मिल के आए हो कि नहीं?
0: नहीं उन्होंने नहीं मिल के है
1: क्यों? उन्होंने यार अंग्रेजी गुरुजी बोल के
0: और
1: विखानी है उन्होंने। हैं,
0: और चल गई मते
1: की होया, व्याही गई है?
0: नहीं इतना कुछ हो कि पता की हो जाऊगी
1: हैं, पर पता
0: शायद
1: पता तो करना ही।
0: जाऊंगी
1: हैं
0: जो आप छड़ती हो नी नी ते जाऊंगी
1: यार, पता तो करना ही, हो गया हूँ किसी दिन।
0: टाइम ही नहीं लगा।
1: ओए भाई, मसला बड़ा ही यार, ये तो बचपन तो शुरू हो जाता अजकल। की सुनाओगे फिर?
0: आज कुछ नहीं गल्ला सुनावे
1: गल्ला ही सुनाओगे? ओके ओके, होर केड़ी गल है फिर? मज मुझ वेखी कि नहीं?
0: मतलब जिदा मेरी भैन वा
1: अच्छा,
0: बेड़ा लोपी लाबी सब कुछ खुला बड़ा वा ना
1: हाँ
0: ते जद मर्जी टुटी जांदी कोई परवाह नहीं भी पैर सड़ जानगे गोडे लग जानगे तुरी
1: हाँ
0: आंदी मां दादा सब कुछ इदां ही करी जांदी।
1: ओ फिर वधिया, फिर पैर पक्के हो जाणगे ना उहदे। वेरी नाइस, आ ते फिर वधिया। चलो कदों आउणा तुसीं वापस?
0: एक साल बाद आ जाना है।
1: हैं, 1 साल?
0: हाँ जी
1: नहीं यार, इन्ना चिर थोड़ी रहना तुसीं उत्थे,
0: ना वो उन्ने चे ध्याना
1: 1 साल रहना वा?
0: आओ स्कूल जाना ना 1 साल।
1: हैं अच्छा, उत्थे इंडिया स्कूल जाना मैं 1 साल?
0: हाँ इच्छे इंडिया
2: अच्छा,
0: स्कूल
2: सानू
0: जिते
2: नहीं सी
0: हैगा
2: पता।
1: नहीं मैनू नहीं फिर पता
2: असि
1: है
2: क्या
1: कल
2: कितने
1: दा।
2: 2 महीने ले गए।
1: आहो,
0: एडमिशन कराई है।
1: अच्छा हुण
2: ठीक
1: तुसी
0: है
1: उत्थे पढ़िया करना वा,
0: हाँ जी
1: ते गए नहीं स्कूल?
0: दिसंबर
1: ਗਏ ਨੀ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਹਲੇ?
0: ਗਏ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ?
0: ਹੈ
1: ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਹਲੇ?
0: ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾ ਨਾ,
2: ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
0: ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।
1: ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ
0: ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸਕੂਲ,
1: ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ।
0: ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ।
1: ਵਾਹ,
2: ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ,
1: ਗੁੱਡ ਹੈ ਫਿਰ। ਵਾਹ,
0: ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ
2: ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ?
0: ਠੀਕ ਹੈ,
2: ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ, ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ? ਅੱਜ
0: ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ।
1: ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ,
2: ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਈ।
1: ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਤੇ
2: ਉਮਰ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ,
1: ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हां जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी नहीं हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी
1: रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Haji 1674 AM.

रेडियो, हाँ जी, 1674 AM, जुलाई 2026, साल महीना ते तारीख पहली, और दिन हैगा बुधवार। भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां प्रोग्राम न्यूज़ रूम दे विच आओ जानदे आं अज शाम की कुछ हो वापर रहा पूरी दुनिया दे विच। डोनाल्ड ट्रंप एक नाम जिस तो बगैर इंटरनेशनल न्यूज़ शुरू नहीं हो सकदियां। अमरीका दे राष्ट्रपति बनन तो बाद ट्रंप ने सियासी तौर दे उत्ते की लाहा खटिया की नहीं खटिया, इस दे अलग विश्लेषण हो सकदे ने, पर एक बिजनेसमैन दे तौर दे उत्ते सियासत दे विच आए डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा सियासत दे विचों भी पैसे कमाए ने। यह इस करके दावा किया जा सकता है क्योंकि वाइट हाउस दे विच रहंदे होया पिछले साल एक क्रिप्टो करंसी का उन्होंने इन्ना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिता जिसके चलद हूँ अरबा डॉलर तक उन्होंने कमाई पहुँच गई है। ट्रंप ने साल 2025 के क्रिप्टो करंसी के नाल जुड़े अपने इन्वेस्टमेंट तो करीब 1.25 अरब डॉलर की कमाई की है। भारतीय रुपया च गुणा घटाओ करना हो लगभग 11,000 करोड़ रुपया उन्होंने एक साल के कमा लिया। यह जानकारी मंगलवार के दिन 30 जून न अमरीकी सरकार US ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स द्वारा जारी किए गए डेटा के सामने आई है। दस दई है कि अमरीका 1978 बने एक कानून के मुताबिक अमरीकी राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति अपनी कमाई तो अपनी संपत्तियों की जानकारी देना लाजमी होंगे। 900 तो वध पन्नों के इस दस्तावेज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की स्टार्टअप कंपनी के नाल जुड़े होने के चलद लगभग 55 करोड़ डॉलर हासिल हुए ने। ट्रंप परिवार ने इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म नू अपनी सपोर्ट दिती सी और इस दे नाम दा इस्तेमाल करन दी भी इजाजत दिती सी। ए प्लेटफॉर्म सितंबर 2024 दे विच यानी 2024 दे विच शुरू किया गया सी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अपनी खुद की क्रिप्टो करंसी WLFI लॉन्च

उठो नहीं, उठो नहीं, उठो नहीं, लेटे रहो, लेटे रहो। हाँ, जो भी हुआ लेकिन तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।
2: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां मित्रां दे चादरे ते पा दे मोरनी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल ते तुसी सुन रहे हो हांजी रेडियो।

0: 갑자기 왜 이런 거지?
1: आरोही
2: हो आए बेटा, तुम ये घर भी बसा रही हो और वो घर भी, मगर बिना
3: गल्ला गुल्ला ज्यादा नहीं करनिया है, फिल्म ही चला देंदे ने गाणियां दे विच। एक अज दे दिन दी सांझ जिहड़ी ओ असीं अपने सोशल मीडिया पेज ते भी पाई है, तुसीं सोशल मीडिया दे उत्ते जदों जाने हो ते खबरां खुबरां जे ठीक लगदियां ने तां दस दिया करो। मैं बड़ा हैरान होया, एक पॉलिन हैनसन दे उत्ते प्रोग्राम कीता पिछले तो पिछले हफ्ते, ते उहदे ते लोकां ने प्रोग्राम सुणन दी बजाए कमेंटो कमेंट ही होई जा रहे हैगे ने वी भरावो इन्नी मेहनत कीती हैगी है कि तुसीं घट्टो घट्ट प्रोग्राम ही सुन लो तो वो ही कोई टिप्पणी कर दिया करो, है नहीं अपनी कम्युनिटी च पॉजिटिविटी कितों पाल दी।

0: रेडियो हांजी 1674
1: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।
2: हांजी रेडियो
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
7: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिन्नो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
8: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
6: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
9: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
0: रेडियो हांजी 1674 AM।
10: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
11: हांजी रेडियो।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
12: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
12: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
13: हेलो, सत श्री अकाल जी, मैं आपकी

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

रेडियो, हाँ जी, 1674 AM, जुलाई 2026, साल महीना ते तारीख पहली, और दिन हैगा बुधवार। भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां प्रोग्राम न्यूज़ रूम दे विच आओ जानदे आं अज शाम की कुछ हो वापर रहा पूरी दुनिया दे विच। डोनाल्ड ट्रंप एक नाम जिस तो बगैर इंटरनेशनल न्यूज़ शुरू नहीं हो सकदियां। अमरीका दे राष्ट्रपति बनन तो बाद ट्रंप ने सियासी तौर दे उत्ते की लाहा खटिया की नहीं खटिया, इस दे अलग विश्लेषण हो सकदे ने, पर एक बिजनेसमैन दे तौर दे उत्ते सियासत दे विच आए डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा सियासत दे विचों भी पैसे कमाए ने। यह इस करके दावा किया जा सकता है क्योंकि वाइट हाउस दे विच रहंदे होया पिछले साल एक क्रिप्टो करंसी का उन्होंने इन्ना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिता जिसके चलद हूँ अरबा डॉलर तक उन्होंने कमाई पहुँच गई है। ट्रंप ने साल 2025 के क्रिप्टो करंसी के नाल जुड़े अपने इन्वेस्टमेंट तो करीब 1.25 अरब डॉलर की कमाई की है। भारतीय रुपया च गुणा घटाओ करना हो लगभग 11,000 करोड़ रुपया उन्होंने एक साल के कमा लिया। यह जानकारी मंगलवार के दिन 30 जून न अमरीकी सरकार US ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स द्वारा जारी किए गए डेटा के सामने आई है। दस दई है कि अमरीका 1978 बने एक कानून के मुताबिक अमरीकी राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति अपनी कमाई तो अपनी संपत्तियों की जानकारी देना लाजमी होंगे। 900 तो वध पन्निया के इस दस्तावेज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की स्टार्टअप कंपनी के नाल जुड़े होने के चलद लगभग 55 करोड़ डॉलर हासिल हुए ने। ट्रंप परिवार ने इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म नू अपनी सपोर्ट दिती सी और इस दे नाम दा इस्तेमाल करन दी भी इजाजत दिती सी। ए प्लेटफॉर्म सितंबर 2024 दे विच यानी 2024 दे विच शुरू किया गया सी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अपनी खुद की क्रिप्टो करंसी WLFI लॉन्च की सी। इसकी पहली बिक्री 55 करोड़ डॉलर जुटा के की गई है। दस दई है कि 2024

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

का ब्रेक नहीं कर सकती, गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम, ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी, मैं हूँ इनका और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो, हाँ जी 1674 AM बेबी।
3: अच्छा सुनना एक गल दस, सच्ची सच्ची दसेंगा

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Hanji Hanji, oye Hanji Hanji,
4: Hanji Radio.
5: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नु हसा हसा के लोट पोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू ढिल्लों, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट ढिल्लो फिर कहेंगे
4: पर ढिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ
3: ਸਟੈਟਿਕ ਸੀਜ਼ ਬੇਬੀ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

हाई ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए।

सकती है। सो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: ग्रोवर्स, विंग ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।
1: मेरे शहर दी सब तो चंगी खुशबू तेरे कोलों संग गई।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: खातिर बुरा काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।

0: This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन हंसते रहिए.
1: बेबी मेरी हाय हाय गोली मारे, अखियों से हाय हाय.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਆਲ ਦ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: हाय दिस इज अरबाज खान एंड यू लिसनिंग टू हांजी रेडियो 167 4 AM।

0: नानक प्रसर नागती कर प्रसाद गुरुदेव सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमत पावे
1: जय प्रसाद बसेष मंदिर तिसे त्याज सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे तिसे त्याका तब लुभावे
1: जय प्रसाद सुशेष हुई जय मन अठ पहता का जस गवी जय
0: जय प्रसाद तुझ सब को मान मुक्ता को जस रसन बखान
1: जय प्रसाद तेरा धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जपत दर गए मान पावे नानक पत सेती कर जावे
1: जय प्रसाद और कंचन देही लिवलाओ तिस नाम स्नेही
0: जय प्रसाद तेरा उला रह तो मन सुख पावे हर हर जस कह
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाक मन सनी प्रभ ठाकर प्रभता कह
0: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उचे
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे
0: जय प्रसाद आबू खन पहरी जय मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय
1: जय प्रसाद असुहस्त असुवारी मन तिस पर को कबू ना बिसारी
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोय प्रभ अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत सहते आई
0: सहते आजो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सुप्रभ सिमरो सदा अनूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सुप्रभ सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह
0: जय प्रसाद सुनै करनाद जय प्रसाद पेख है बिस्माद
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुसहजे बसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है
1: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुसह समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू पट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप
1: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूर है
0: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच
1: जय प्रसाद सब कीरत होए नानक जाप जपै जप सोए
0: आप जपाए जपै सो नाओ आप गाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास
0: सब सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए
1: सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हू लया
0: जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक कह कछु न हाथ
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कह मन विश्राम अठ छे श्लोक
0: आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचार्ज कथा सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: साधक संग मखूजल होत साध संग मल सगली को
0: साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान
1: साधक संग पूजे पवनेरा साध संग सुबहुत नबेरा
0: साधक संग पाए नाम रतन साधक संग कुपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी
0: साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ल
1: साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग हो सब की रेन साधक संग मनोहर बैन
1: साधक संग न कतु धावे साध संग अस्तित मन पावे
0: साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन समीर साधु के संग महापुनी
0: साध संग किसे नहीं बैर साधक संग न बींगा पैर
1: साधक संग नही को मंदा सत्संग जाने परमानंदा
0: साधक संग नही हो ताप साधक संग तजै सा बाप
1: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु बनियाई
0: साधक संग न भूतावे साधक संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह
0: साधक संग बसै थान उचे साधु के संग महल पहुंचे
1: साधक संग दिड़े सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म
0: साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान
1: साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीट कुटम निस्तारे
0: साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबह सुर देवा
0: साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन
1: साधक संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल
1: साध के संग कुलूकत हर है साध के संग नर पर हर है
0: साध के संग इहां उहां सुहिला साध संग बिछड़त हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरै साध सुन रसै
1: साध के संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तर है
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग गड़गड़ डीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी
1: साध के संग मेटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग
0: साध की महिमा भेद ना जाने जीता सुने तेता बखियाने
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा हुई ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची
0: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रा भेद न पाई
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कह मन विश्राम अठ सत श्लोक
0: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Namaskar and welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Last episode में हम लोग बात कर रहे थे कि पैसे का महत्व क्या है और चीजों का महत्व क्या है. For example, कार का या खिलौने का या बचपन में जो मैंने बात की थी पतंग का, कि हम पैसा कमाते कमाते खुशी ढूंढते ढूंढते वो चीज भूल जाते हैं जिससे पैसा नहीं खरीद सकता.
1: क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जो चीजें हम खरीद रहे हैं वो खुशी के लिए हैं, तो देन इट वाज एक्चुअली कि खुशी पैसों से खरीदी जा रही थी.
0: और नहीं खरीदे और पैसा ना हो तो
1: वी थॉट विल नॉट बी हैप्पी ना.
0: तो बात
1: तो इवन व्हेन वी से कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बट इफ आई से पैसों से एक दो तीन चार चीजें खरीदी जा सकती हैं, और जब ये चार चीजें आएंगी तो मैं खुश होंगी. सो इट इफेक्टिवली केम टू आई वाज बाइंग हैप्पीनेस.
0: That's a nice word.
1: It is effectively coming
0: nice
1: to that.
0: Nice line, buying happiness.
1: I'm buying happiness, and which meant कि जब तक ये चीजें मेरे पास नहीं आएंगी, I'm not happy. क्यों नहीं आ रही? मेरे पास पैसा नहीं है. तो पैसे कमाओ, चीज खरीदो, be happy.
0: और जब तक ये सब नहीं मिलेगा, I'm buying unhappiness.
1: Very good. So my dependency, चीजों के ऊपर, and फिर equation. See, it's very important कि equation of life has to be set right. अगर बेसिक इक्वेशन राइट नहीं होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जीवन की यात्रा बीत जाए और फर्स्ट इक्वेशन राइट नहीं थी. क्योंकि जैसे आपने लास्ट टाइम शेयर किया, ये तो बचपन से सिखाया गया था. एक वीडियो गेम पेरेंट घर लेके आएगा, बी हैप्पी, नाउ यू आर हैप्पी ना, नाउ यू गॉट दिस, नाउ यू
0: आर. बोलते भी है इतना कुछ, सब कुछ लेके आया, अभी भी दुखी है, अभी भी रो रहा है, और क्या क्या लाऊं? दूसरे बच्चों को देखो, कुछ नहीं मिलता है, उनके माँ बाप भी ये सब नहीं करते, मैं कितने महंगे महंगे खिलौने लाता हूँ, फिर भी रोता है.
1: एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन कब बनी? राइट फ्रॉम दैट एज. यहाँ तक कि कहीं लेकर गए, घूमने के लिए भी लेकर गए, हॉलीडे पर भी लेकर गए. सो इट वॉज डीप इनग्रेन्ड, वी आर गोइंग देयर so that we will be happy.
0: Sister, मेरी बेटी को एक छोटा सा बच्चा हुआ, वो रो रहा था, तो मैंने उसके पास खिलौना ऐसे टी टी टी किया, तो वो उसका ध्यान उधर गया और वो रोना बंद कर दिया.
1: ठीक है.
0: अब मैं ये 2 रुपए का करता या 200 रुपए का करता, उसको एक्चुअली हुआ डिस्ट्रैक्शन, और वो हुआ चंद सेकंड्स के लिए. फिर वो जब उसकी आवाज से बोर हुआ, फिर रोने लग गया.
1: दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन. आज हम खुशी के लिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शंस में भी लेकर जाते हैं. टीवी देखना, मूवी देखना, शॉपिंग जाना, हॉलिडे के लिए जाना, माय होल लाइफ इट्स सो स्ट्रेस, सो मच वर्क, आई एम सो अनहैप्पी, सो मच टेंशन, लेट मी गो फॉर अ हॉलिडे.
0: और जिस तरह ये डिस्ट्रैक्शन से बोर होकर वापस रोने लगा, वैसे फिर आपकी बात आ गई.
1: तो हमने क्या किया इन चीजों में भी? आप देखो, शाम को घर आकर अगर मुझे रिलैक्स करना है, लेट मी रिलैक्स, तो वेयर इज माई पोजिशन टू रिलैक्स?
0: टीवी,
1: इन फ्रंट ऑफ द टीवी. नाउ देन वी सेड दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, दिस वॉज नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस. जैसे आपने कहा, वो थोड़ी देर के लिए मेरे माइंड को मेरी परेशानियों से डिस्ट्रैक्ट करता, क्योंकि उसके अंदर वो पावर थी कि मेरे माइंड को कंप्लीटली इंगेज कर लेता. तो मन जो सोच रहा था प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ऑफ द डे, किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा, ये सब मन पर चल रहा था. जब ये माइंड पर ये थॉट्स चल रही थी, आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज आई वॉज क्रिएटिंग दोज थॉट्स. केम होम इन द इवनिंग, सैट इन फ्रंट ऑफ द टीवी. अच्छा, टीवी डिस्ट्रैक्शन फिर भी ठीक है. स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें क्या आई? मूड ठीक नहीं है ना आज, टेंशन है ना, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है ना, इस टाइम पे मैं एक सिगरेट ले लू ना, मेरा गुस्सा चला जाएगा.
0: एक सिगरेट ले लू, एक पिक्चर देखने चले जाता हूँ, पिक्चर देखने के बाद बार में चले जाता हूँ, बार के बाद डांस पे चले जाता हूँ, सुबह 3 बजे घर आके फिर
1: और कुछ नहीं तो एक हॉलिडे पे चला जाता हूँ. ऑलवेज ये करूंगा तो खुशी, ये करूंगा तो खुशी, ये करूंगा तो खुशी. डिस्ट्रैक्शन जितनी देर हम वो करेंगे, हमारा मन हमारी प्रॉब्लम से हट जाएगा.
0: बट
1: खुशी नहीं आई है, वो वाली सोच बंद हो चुकी है थोड़ी देर के लिए. What is alcohol doing to me? What is a cigarette doing to me?
0: थोड़ी देर के लिए मन को
1: thought stops, it becomes numb. My conscious layer of thinking has become numb with the substance. या शॉपिंग. आज बहुत सारे लोगों के लिए शॉपिंग एक डी स्ट्रेसर है. आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, लेट मी गो फॉर शॉपिंग. क्या करेगा शॉपिंग? शॉपिंग कुछ देर के लिए वो सारी जो सोच चल रही थी
0: ध्यान दूसरी तरफ लगा देगा,
1: डिस्ट्रैक्शन.
0: लेकिन छोटे बच्चे पे फिर हम चलते वापस, हमको बाद में पता चला है वो कुछ वो हिलाया, मैंने गिटार बजाया, मैंने चिल्ला के म्यूजिक लगाई, लेकिन उसको समझ में नहीं है. बाद में हमारे समझ में आया छोटी सी बात थी, उसको नींद आ रही है और भूख लग रही है.
1: चीज कुछ और चाहिए, हम चीजें कुछ और दे रहे हैं. वी हैव टू रिमेम्बर, अगर हम अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने दर्द से, यू नो फिजिकल पेन को भी आप देखो, अगर हमें थोड़ा भी दर्द है, आई हैव अ टूथएक, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ नी पेन, लेट मी डिस्ट्रैक्ट माई माइंड टू समथिंग एल्स. एक मूवी देखने बैठ जाओ, दर्द नहीं होगा उतनी देर. किसी के साथ बातें करने बैठ जाओ, दर्द महसूस नहीं होगा. यहाँ तक कि कोई काम जो इंजॉय करते हैं, कि हम जब काम कर रहे होते हैं हमें दर्द नहीं होता कहीं शरीर में, जब काम खत्म हो जाता
0: है, दिन के बाद घर आया, भूख लग रही थी, खुशी खुशी डिशेस बना बना के भाग भाग के दे रहे हैं, फिर जब हो गए खा पी के, अरे मेरे को तो यहाँ दर्द है.
1: एब्सोल्युटली.
0: हमारी शूटिंग में होते हैं हमको फाइट वाइट में मार लग जाती है, घर जाके जब शावर के नीचे जलने लगता है इधर उधर, अरे यार यहाँ चोट कब लग गई थी पता ही नहीं चला, यहाँ दर्द हो रहा है.
1: नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, चोट थी उस टाइम भी, चोट थी,
0: महसूस नहीं हुआ,
1: मन उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ.
0: ओके,
1: द माइंड डिडंट गो टुवर्ड्स इट, सो इट डिडंट फील इट, बट द पेन वाज देयर, दर्द वहां पे था. इसी तरह अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मैं परेशान हूँ, मैंने कहा अल्कोहल ले लो, सिगरेट ले लो, टीवी देख लो, वी सेड दिस इज अ डी स्ट्रेसर. लेट अस अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ डी स्ट्रेसर. इफ इट वॉज अ डी स्ट्रेसर, मतलब वो वाली चीज मेरे स्ट्रेस को खत्म करती. मेरा दर्द वही का वही है, लेकिन मैंने क्या किया, दर्द से अपने मन को थोड़ी देर के लिए हटा दिया. इज इट हेल्दी?
0: कभी कभी हटाते भी हैं और कभी कभी बढ़ भी जाते हैं,
1: लेकिन फर्स्ट इज इट हेल्दी अपने मन को दर्द से हटाना?
0: हेल्दी तरीके से हटाना हेल्दी है?
1: नहीं, इस तरह से सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करके अपने मन को दर्द से हटाना, विल इट बी हेल्दी?
0: नो.
1: व्हाई?
0: क्योंकि वो झूठा झूठा आर्टिफिशियल है ना.
1: नॉट ओनली दैट, सपोज मुझे जैसे आपने कहा घुटने में चोट लगी है, सुबह से शूटिंग चल रही है, सुबह में चोट लगी थी, रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो दर्द की महसूसता नहीं हुई, लेकिन रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चोट उतनी देर में बढ़ चुकी है. अगर हम अपनी जो चिंता है, परेशानियां हैं, जो वो थॉट्स हैं, अगर हम उन पे वर्क नहीं करेंगे, उनको ठीक करने की अटेंशन नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी चीजों में लगाते जाएंगे, वो जो बीमारी है, वो जो दर्द है, वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा. बिकॉज इफ यू डोंट हील इट, इट्स इंक्रीजिंग, यू आर जस्ट टेकिंग योर माइंड अवे फ्रॉम इट. सो ये जो सारी चीजें हैं,
0: जैसे वो बच्चे को कितना भी डिस्ट्रैक्ट करो, उसकी भूख और लग रही है, और लग रही है, उसकी जो
1: क्योंकि उतना टाइम,
0: नींद उसको और आ रही है और चिड़चिड़ा हो रहा है.
1: आपने क्या किया, आपने आधा घंटे तक उसको वो देने की बजाय
0: कुछ और ट्राई किया,
1: और ट्राई करते गए, और जितनी देर बीच में टाइम गया उतना उसकी वो चीज जो चाहिए थी वो बढ़ता गया. सेम विद माई जर्नी ऑफ लाइफ, पेन है अंदर, दर्द है, मैंने कहा खिलौना ला दो, फिर उसके बाद बड़े हुए मोटरसाइकिल ले दो, ये खुशी देगा, ये खुशी देगा. अपने बेसिक थिंकिंग को उस पर वर्क नहीं किया तो वो जो थिंकिंग है, वो जो चोट है अंदर, वो जो दर्द है अंदर, वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही गया ना. और फिर एक ऐसी स्टेज पे आके पहुंचे, कहते हमारे घर में अब सब कुछ है,
0: सुख शांति नहीं है, हैप्पीनेस
1: नहीं है, दर्द अभी भी वही है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम अपनी खुशी को जहां जहां ढूंढ रहे हैं, सी टू फाइंड हैप्पीनेस, लेट अस फर्स्ट रिमूव ऑल दोस थिंग्स जहां हमने सोचा कि खुशी है. वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर वेयर इट इज, फर्स्ट चेक ऑल दोस थिंग्स वेयर इट इज नॉट वेयर वी थॉट इट इज. ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स, साधन,
0: एडिक्शन,
1: यू नो, जैसे आपने कहा सुख शांति, ये जो हमारे साधन है जीवन के, इनको भी आज हमने टाइटल क्या दिया, सुख सुविधा के साधन. ये सुख के साधन है हमारे हमने का, ये सुख के साधन नहीं थे, ये कंफर्ट के साधन थे।
0: लेकिन सिस्टर पहले जमाने में सुख का साधन रेफ्रिजरेटर हुआ करता था 40 साल पहले, अब नेसेसिटी हो गया है।
1: 40 साल पहले भी वो तो सुख का साधन नहीं था,
0: कंफर्ट था।
1: कंफर्ट नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: नाउ एसेंशियल हो गया ना,
1: तो भी, लेकिन एसेंशियल ऑल्सो फॉर व्हाट? फॉर कंफर्ट। सुख और कंफर्ट, खुशी और कंफर्ट अलग चीज है।

0: सिंपल. वी हैव मेड ऑब्जेक्ट. मेरे पास फोन कौन सा है? फोन का काम है बात करने के लिए. लेकिन ये फोन होगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये ऐसे वाला फोन है इनके पास. तो मैंने ऑब्जेक्ट्स को,
1: आप फोन की बात कर रहे हैं, अभी मैं आ रहा था जब हैदराबाद इस शूटिंग के लिए, तो मेरा स्टाफ बोल रहा था, साहब ये तो विवेक जी का स्टाफ लेकर जाता है बैग, आपको शोभा नहीं देता, आप जरा महंगा वाला बैग ले लो. मेरा स्टाफ मुझे सिखा रहा था क्योंकि एयरक्राफ्ट पे एयरपोर्ट लोग देखेंगे. हाँ. ये उतरेंगे तो कौन सा साहब ने कौन सा वो लाया, कौन सी घड़ी पहनी है.
0: एब्सोल्युटली. तो ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या क्या बना दिया, साधनों को, चीजों को हमने क्या क्या बना दिया. और तब क्योंकि उसको हमने स्टेटस सिंबल बना दिया, हमने उसको रिस्पेक्ट का तरीका बना दिया.
1: हाँ, जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा था, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल, स्टेटस सिंबल. लेकिन मैं आज भी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं फिर वहीं आऊंगा कि आज की दुनिया में जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, शो ऑफ, शोमैनशिप की जरूरत. जब सब लोग ये करते हैं तो मतलब सारी दुनिया ही रॉन्ग होगी आपके लिए.
0: अगेन, वी आर नॉट सेइंग रॉन्ग और राइट. इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग और राइट, इट्स अबाउट क्लैरिटी. इट डजंट मीन कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनो. इट डजंट मीन कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी, महंगे से महंगा मकान नहीं खरीदो.
1: आपको मालूम है हमारे दोस्त लोग क्या बोलते हैं, यार क्या इस आदमी का स्टाइल है, क्या रॉयल आदमी है, स्कॉच से कम तो पीता नहीं है, बीएमडब्ल्यू से कम तो उतरता नहीं है, पर्स भी लेता तो महंगे में महंगा, शर्ट भी लेता, क्या आदमी रॉयल है, क्या स्टाइल है उसका,
0: स्टाइल
1: तो
0: है
1: उसकी, क्या उसकी इज्जत करते. आते तो खड़े होते हैं लोग,
0: खड़े होते हैं.
1: कोई मैं पैजामा पहन के धोती पहन के चला जाऊं,
0: खड़े होते. अगेन वी सॉ लास्ट टाइम, खड़े होते हैं.
1: तो
0: स्टाइल है, अग्रीड. ये रिस्पेक्ट नहीं है.
1: जो भी अच्छा तो लगता है ना,
0: अच्छा लगता है कि आपके लिए लोग खड़े हो रहे हैं, दैट्स फाइन. सी, वी आर नॉट, सी अगेन, वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, वी आर सेइंग
1: सोसाइटी में तो यू आर रिस्पेक्टेड, वेल एक्सेप्टेड.
0: एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड, डिफरेंट वर्ड्स. एक्सेप्टेड मीन्स हाँ, इन्होंने बहुत अचीव किया, उस बात को एक्सेप्ट किया है. आपके व्यवहार, स्वभाव और संस्कार को एक्सेप्ट किया है. आपकी गाड़ी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको एक्सेप्ट किया. अगर आपने जब
1: आज मैं अपनी बेटी शादी में दूं तो अच्छे स्वभाव और संस्कार खाली देख के नहीं दूंगा.
0: इनिशियली
1: ये देखूंगा, ये देखूंगा इसके कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं. मैं खुद नहीं करूंगा तो आपको फिर मैं क्या बोलूं?
0: अब जब आप ये सब देखकर रिश्ता जोड़ेंगे,
1: बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर, बहुत बड़े पंडित जो सबकी शादियां कराए, सबको डोनेशन करके, घर में कुछ एक छोटी सी हंडी है उधर मैं बेटी दे दूंगा, इतने बड़े संस्कार वाला आदमी है.
0: परफेक्ट. तो आपने डिग्री देखी, लुक्स देखी,
1: गाड़ियां देखी,
0: गाड़ियां देखी,
1: मेरी बेटी कितना आराम करेगी वो देखा,
0: सब कुछ देखा,
1: नौकर है या सारे दिन किचन में बैठे रहेंगे, सब देखूंगा ना,
0: सब देखकर शादी की ना,
1: देखकर ही करूंगा,
0: देखकर ही करेंगे ना. फाइनली जो रिश्ता जुड़ेगा दो लोगों के बीच या दो परिवारों के बीच, जो रिश्ता जुड़ेगा और कितना सुंदर वो रिश्ता होगा, कितना उनका आपस में संस्कारों में तालमेल होगा, कितना सुखी वो परिवार होगा, कितना प्यार उन दो लोगों के बीच में होगा, गारंटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्स एंड द बंगलोज यू सॉ इन द बिगिनिंग.
1: नहीं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये रिश्ता दुकान में नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं परचेज किया जाता, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा.
0: अब यही अगर हम थोड़ा सा स्वभाव संस्कार देख लेते उस टाइम, हम किस से शादी करते,
1: फिर ध्यान में क्यों नहीं आती ये बात है?
0: क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइफ, अगर मेरी बेटी जिस घर जाएगी वहां अगर गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा, उस घर में अगर सारी चीजें होंगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी.
1: नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो मुझे इतने ऐसे परिवार मालूम है जहां पर डिवोर्स ही हुआ है.
0: इट्स नॉट ऑल्सो कि अगर ये सब
1: नहीं, रिचनेस देख के किया, पैसा देख के,
0: इट्स नॉट, सी अगेन, इट्स नॉट कि रिचनेस इज नॉट राइट. रिचनेस इज ब्यूटिफुल. इट्स ब्यूटिफुल टू हैव मनी, वेरी नाइस, बट डोंट से मनी फॉर हैप्पीनेस. पैसा होना आपके पास है, इट्स ब्यूटिफुल. आप दुनिया की सबसे महंगी चीज खरीद सकते हैं, ब्यूटिफुल. लेकिन खरीदते समय ये अपने आप से नहीं कहना कि दिस ऑब्जेक्ट इज गिविंग मी हैप्पीनेस एंड रिस्पेक्ट.
1: एक छोटे मोटे शायर ने

0: बहन बोली थी, उसने बोल दिया, अरे पैसा तो खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम तो खुदा से कम भी नहीं। तो उसने इक्वेट कर दिया पैसे को खुदा से,
1: क्योंकि
0: और हिंदी में भी बोले लक्ष्मी, लक्ष्मी पूजा, तो ऐसे ही सब बन गए। मतलब इतनी,
1: लेकिन अब चेकिंग करनी है ना, अब अपने जीवन की चेकिंग करनी है। अगेन, सब लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग इट टू दैट। लेट मी सी माई क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, आई हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय,
0: बट
1: वाई एम आई नॉट हैप्पी टूडे। Each of us can sit back and ask themselves, I have everything that money can buy.
0: इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिस्टर मेरी गुरु के पास मैंने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को झुक कर माथा टेक कर भीख मांगते हुए देखा है अपनी आंखों से कि मुझे गुरुजी मुझे सुख शांति दो, मैं खुश नहीं हूँ। अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं, सब कुछ रखते हुए खुश क्यों नहीं है। फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब दरिद्रता में है, जीरो मनी में है, उधार में है, परेशान है, उसके बाद भी तो नहीं है ना सुख शांति।
1: इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, विच मीन्स ये दोनों चीजें अलग अलग हैं।
0: दोनों एक्सट्रीम्स हैं?
1: नहीं, एक्सट्रीम्स नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं।
0: तो जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है?
1: ये दो अलग चीजें हैं। फर्स्ट लेट्स लुक एट इट, ये दो अलग चीजें हैं। एक चीजें हैं जड़, सारी जड़ चीजें हैं जो पैसा खरीद सकता है, सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने इस जीवन में की, वो एक साइड है, लेट्स टेक इट एज वन साइड। दूसरी साइड है माई होल लिस्ट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, माई वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें आपने जैसे कहा सुख शांति, लव, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये एक लिस्ट है। वी आर नॉट सेइंग कि जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं होगी, या जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खुशी होगी। इट इज जस्ट दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स।
0: अच्छा,
1: ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये ना सोचें कि ये वाली लिस्ट आ जाएगी तो ये वाली भी लिस्ट आ जाएगी। हमने सिर्फ वो छोटी सी की गड़बड़। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है
0: हमारी। कौन सी लिस्ट, प्लीज बताइए।
1: एजुकेशन, अचीवमेंट्स, ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बॉट, दिस इज वन लिस्ट। हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, पीस ऑफ माइंड, दिस इज वन लिस्ट। वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर दीज आर टू डिफरेंट लिस्ट्स। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमने क्या कहा, ये आएगा, चीजें आएंगी, अचीवमेंट आएगी, प्रोफेशनली आई विल डू वेल, अचीव करियर में मैंने बहुत ज्यादा किया, तो ये लिस्ट अपने आप आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, लोग मुझसे प्यार करेंगे, लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमने कहा ये लिस्ट आएगी तो ये वाली लिस्ट अपने आप आ जाएगी। तो हमने अपने जीवन में मेहनत सारी कौन सी लिस्ट पे की, इस वाली लिस्ट पे। यू नो, इट्स लाइक हैविंग टू गार्डन्स, एक हमारे घर के आगे, एक हमारे घर के पीछे। तो ये दो गार्डन है हमारे जीवन के, दो गार्डन है। एक है भौतिक, जिसको आज लोग कहते हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मटीरियलिस्टिक मीन्स मैटर, एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड मी, मटीरियलिस्टिक। वन इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ। वॉट इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ? एवरीथिंग दैट इज इनसाइड मी। मटीरियलिस्टिक, एवरीथिंग आउटसाइड अचीव्ड, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इनसाइड, राइट? तो कहते मटीरियलिस्टिक लाइफ जब से हो गई ना तब से खुशी गुम हो गई। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू एट ऑल। किसी के लिए कहेंगे ये बहुत मटीरियलिस्टिक है, मीन्स इट्स नॉट राइट। नो, इट्स नॉट ट्रू। इट्स गुड टू बी मटीरियलिस्टिक, यू शुड हैव एवरीथिंग। आप जितना खरीद सकते हैं यू शुड हैव एवरीथिंग विद द क्लैरिटी। ये एक गार्डन है मटीरियलिस्टिक, ये दूसरा गार्डन है सुख शांति खुशी। हमने क्या कहा, इस गार्डन को पानी देंगे
0: तो ये अपने आप ग्रो हो जाएगा,
1: अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो हमने अपने दिन के 24 घंटे किस गार्डन में बिताने शुरू कर दिए।
0: मटेरियलिस्टिक,
1: ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है,
0: और उसको हमने इसका रिजल्ट मान लिया, ये करने से वो
1: ये हो जाएगा। हाँ, हमने सोचा इधर मैं पूरा दिन बिताऊंगा ना इस गार्डन को सुंदर बनाने में, तो मेरा ये गार्डन तो अपने आप हो जाएगा, लोग मुझसे प्यार करेंगे, खुशी आ जाएगी, विश्वास होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी सबसे। हमने ये गार्डन पर ध्यान नहीं दिया।
0: क्या करें, बात
1: अब रिजल्ट क्या हुआ, हमारा ये गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया है। आज आप देखो हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा आगे वाला गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया। जिस गार्डन पर ध्यान दिया, दिस इज अ लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। आप जिस चीज पर अटेंशन देंगे आपकी पूरी ऊर्जा वहां जा रही है, जहां आपकी ऊर्जा जाएगी वहां अपने आप चमत्कार होने लगेंगे। आज हमने चमत्कार कर दिए हैं दुनिया के अंदर, हम स्पेस में जा सकते हैं, हम सागर की तलों में जा सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। अटेंशन वेंट देयर, एनर्जी वेंट देयर, वी क्रिएटेड मिरेकल्स। अपने अंदर खुशी क्रिएट करनी है, शांति क्रिएट करनी है, वो नहीं सोचा, क्योंकि हमने सोचा ये करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा, तो उस गार्डन पे अटेंशन नहीं दिया, अटेंशन डेंट को एनर्जी डेंट फ्लो, और वो वाला गार्डन क्या हो गया।
0: क्या करेंगे, जो आप बोल रहे हैं अब इस वक्त सुनते हुए अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं देखूं तो द नंबर वन प्रोड्यूसर्स, नंबर वन एक्टर्स, नंबर वन डायरेक्टर्स, नंबर वन म्यूजिक के लोग अकेले घर में बैठे रहते हैं, जब उनकी पिक्चरें नहीं चलती फेल हो जाते हैं, और जब पैसा नहीं कोई पूछ, जहां चलता वहां जाते, तो उसको लोग, दैट इज देयर हैप्पीनेस, तो लाइफ,
1: तो वो ठीक नहीं, दैट्स नॉट हैप्पीनेस, दैट इज द फ्रंट गार्डन।
0: और जब घर पे लोग आना बंद करते हैं, फोटोग्राफर्स फोटो खींचना आपकी छोड़ देते हैं, आपके पास कोई आके आर्टिकल्स आपके नहीं लिखता है, तो इधर के गार्डन में है कि कौन से गार्डन में है, वो कहां जाए,
1: पीछे वाला गार्डन।
0: इसलिए देखिए पॉन एंड ऑन उसी को पानी डालते रहते हैं,
1: उसी को पानी डालते रहते हैं ना, और पीछे वाला गार्डन सूख रहा है ना,
0: पीछे वाले गार्डन को कोई देखता है क्या?
1: देखता नहीं ना,
0: मैं तो खुद नहीं जाता वहाँ।
1: हाँ, तो अब पीछे वाले गार्डन को नहीं ध्यान दिया, तो फिर इवन व्हेन आई हैव एवरीथिंग, व्हाट डिड आई से, यू सेड आई एम नॉट हैप्पी, एंड देन बाय चांस, जैसे आपने कहा, अचीवमेंट में भी अगर कुछ कम हो गया, तो जब आगे वाला गार्डन सूखा हुआ थोड़ा सा मिला,
0: तो रिजर्व में पीछे भी खाली पड़ा है।
1: नाउ लेट्स लुक एट द अदर वे,
0: ये पॉइंट अच्छा है।
1: yes.
0: आगे सपोजिंग जब खाना पीना है सब खत्म हो गया, तो पीछे जो हमने स्टॉक में रखा है नहीं कुछ के संभाल के, वहाँ अपन उस गार्डन में बैठ के आराम करें,
1: नहीं कर सकते ना?
0: अगर तो उस गार्डन में मैं राजा हूँ, तो यहाँ के राजा में इतना राज हार भी जाऊं, तो ये राज उसके हवाले करके वहाँ वापस राजा बन सकता।
1: ब्यूटिफुल ना। अब इसमें देखो, आगे वाले गार्डन में मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, पीछे वाले गार्डन में खुशी कॉन्फिडेंस, खुशी कॉन्फिडेंस पावर ट्रस्ट रिस्पेक्ट, ये मेरा पीछे वाला गार्डन है। मेरा आगे मटेरियल गार्डन मुझे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट नहीं दे सकता है, बट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मेरे मटेरियल गार्डन को स्ट्रॉन्गर बना सकता है।
0: और मटेरियल गार्डन नष्ट भी हो जाए तो वह सुख शांति मुझे दे सकता है,
1: आई एम स्टिल हैप्पी।
0: हाँ, सुख शांति स्पिरिचुअल गार्डन दे सकता है, ये गार्डन सुख शांति
1: खुशी
0: नहीं दे सकता,
1: क्योंकि ये बाहर है,
0: थोड़ी समझ
1: ये चीजें बाहर है। स्पिरिचुअल अगेन डजंट मीन सम अदर थिंकिंग, यू नो सम पीपल से ओ व्हाई डिड यू गो इन द स्पिरिचुअल लाइफ, इट्स नॉट अ डिफरेंट लाइफ, इट्स
0: स्पिरिचुअल मतलब ये तो नहीं ना माला लेके सारा दिन जपते रहना।
1: एक है जो चीजें बाहर हैं और एक है वो चीजें जो अंदर हैं। खुशी एक फीलिंग है, लव फीलिंग है, रिस्पेक्ट फीलिंग है, कंटेंटमेंट फीलिंग है, विल पावर फीलिंग है, ट्रस्ट फीलिंग है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, आत्मा की ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये अंदर हैं। नॉलेज अचीवमेंट डिग्रीज पोजेशन प्रॉपर्टी रिलेटिव्स बाहर है,
0: ये फीलिंग्स है और वो फीलिंग है।
1: हाँ, स्वीट।
0: yes. इससे खोखलापन आता है, इससे भरता जाता है।
1: उससे खोखलापन भी नहीं आता, सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है।
0: खोखलापन नहीं बोल रहा, उससे वॉइड जो आप बोल रहे थे, सब कुछ रखते हुए भी अशांति नहीं आ रही है।
1: right.
0: मेरे गुरु के पास लोग जाते हैं, पांव पड़ते हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को सुख शांति नहीं है, उसको मैं शब्द को खोखलापन वो वॉइड वो खालीपन वो जब बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ फीलिंग बता रहा हूँ, वहाँ फीलिंग है।
1: लाइक यू सेड कि सब कुछ है, मतलब मेरा सामने वाला गार्डन इज फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग मतलब अब कोई रह नहीं गई चीज जो मैं उस गार्डन में ग्रो करूं, सब कुछ आ गया। अब मैं पुराने वाले पीछे वाले गार्डन पर गया, क्योंकि उसको मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था। वहां क्या आ गया, जिस चीज पर अगर गार्डन पर अटेंशन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा,
0: वो क्या बोलते हैं, कांटे वाले झाड़,
1: जमीन बंजर भी हो सकती है, बहुत कुछ हो गया। तो जीवन कैसे हो गई, नीरसता। दुख, गुस्सा,
0: चुभने वाले कांटे वाले मैं पेड़ बन जाता हूँ, लोगों को चुभता।
1: अब ये भी नहीं करना है कि ये गार्डन से ध्यान हटा के इस गार्डन में लग गए तो वो वाला गार्डन सूख जाए। जीवन की इक्वेशन बहुत राइट होनी चाहिए। ये गार्डन भी इम्पोर्टेंट है, ये गार्डन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 घंटे अगर इस गार्डन में बिताते हैं कि वॉट ऑल आई हैव टू डू डू डू डू डू द होल डे, आई हैव टू डू ऑल दिस, 24 घंटे अगर ये गार्डन में बिताते हैं सिर्फ सारा कुछ बाहर करते हुए, इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ हाउ आई एम बीइंग व्हाइल डूइंग, फर्स्ट वी सेड व्हेन आई डू इट आई विल बी, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट लिटिल बिट and change the way we are going to live, how I will be while doing it. Ek tha ye hoga to then I'll be happy. Now we'll go on a journey and say, while I'm happy, now I'm doing this. Matlab is garden ka dhyan rakhte hue, ab main is garden ka dhyan rakhunga. To mera jo ye garden hai, my internal garden, if this is always strong, तो अगर मेरा जो आउटर गार्डन है ऑफ अचीवमेंट्स, उसमें अगर कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ भी जाए, मेरी खुशी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा पीछे वाला गार्डन हमेशा स्ट्रांग है, अब इसमें सेटिस्फैक्शन इस बात की है कि जो ये बाहर वाला गार्डन है ना, ये परिस्थितियों और लोगों पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो ये पीछे वाला गार्डन है ये सिर्फ एक के कंट्रोल में है, परिस्थितियां और लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है।
0: एक के कंट्रोल में मतलब?
1: मेरे अंदर का जो गार्डन है वो किसके कंट्रोल में है?
0: एक मींस
1: में आई
0: सिस्टर, एक मींस मैं, बहुत अच्छा ये पॉइंट है, मुझे इस पे आपसे बात करना है, मैं अगले एपिसोड में जरूर करूंगा। और इस बार समय बीतता जा रहा है तो धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार एंड ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: टीवी, शॉपिंग, हॉलिडे, स्मोकिंग और एल्कोहल इज नॉट अ डिस्ट्रेसर, इट इज ओनली अ टेम्पररी डिविएशन फ्रॉम द पेन। द इमोशनल वाउंड ऑफ स्ट्रेस, एंगर और हर्ट गेट्स डीपर बिकॉज इंस्टेड ऑफ हीलिंग इट वी आर डिस्ट्रैक्टिंग आवर माइंड अवे फ्रॉम इट। अचीवमेंट्स एंड पोजिशंस कैन गेट अस रिगार्ड, not happiness and respect. Regard is an outer gesture and respect is a feeling for what the person is. Possessions give us comfort. Physical comfort is different from emotional comfort. Happiness, peace and love is our internal creation and can be created irrespective of external comforts.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
2: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
3: रेडियो हांजी 1674

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji. Stay tuned.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
5: This station is now the ultimate power in the universe.
6: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: रेडियो हाजी 1674 AM।